उजाला रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इन्फॉर्मेशन उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्र के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेट के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार लड़कन भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्रा के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेट के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार के रात में 7:15 से 7:15 तक। फ्रेडाफन फन क्वर्ट ओफर ज़ेफ़न तोट क्वर्ट ओफर आख्त वेंसखार्ड क्रिमाटोरियम ओक मिरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 से जातर दखास्तांद 1 किए जाएंगे वेंसखार्ड क्रिमाटोरियम ओक मिरवेख 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्फ में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसात अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराह भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

वो कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

कल हो और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए हौतन्स के रहने वाले समस्त परिवार महादेव मिसीर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांडा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर की मृत्यु निवखेन के सेंट आंतोनियो चिकन हाउस में हो गई है। हौतन से समस्त परिवार महादेव मिसीर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे है कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेयन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांडा ब्लिंसी शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसीर के मृत्यु निवखेन के सेंट आंतोनियो चिकन हाउस में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका यह है आज रात के 6 बजे से 7 बजे तक, आज बुधवार के रात में 6 बजे से 7 बजे तक, और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेदा खानस्तांद फिर उर किए जाएंगे दांगलोबेक क्रीमाटोरियम और यह है फ्लोरिडा ड्रीव नंबर 7 उत्तराखंड ओवर फेख्त में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर फुरसोरखिंग परिवार महादेव मिसीर के दुख में शामिल है।

0: देश हूँ।
1: और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अलमेर के रहने वाले परिवार प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंत ख्यार औत लड़कन इंग्रित जिन बेटा और केत प्यारे के माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट एफियन हेनरियटे रोलांड होल्स्ट हाउस की रहने वाली विधवा जगदेई प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अलमेर से लड़कन प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंत ख्यार औत लड़कन इंग्रित जेन बेटा और केत प्यारे के माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट कॉर्टफोर्ट एफियन हेनरियटे रोलांड होल्स्ट हाउस की रहने वाली विधवा जगदेई प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 2:30 बजे फ्रेदा खानस्तांद हलफदरी किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-1376-3108 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार प्यारे और परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो है ये, और यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। सीएच आत्मा की आवाज में गीत आप सुनेंगे, और ये गीत पेश है हौतिन के रहने वाले परिवार महादेव मिसीर। पत्नी अल्फी की तरफ से प्यारा स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मीरांदा, लिंसे, शकिता और राम के तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल की आयु में इनकर मृत्यु जो बीते हुए बीफे को हो गई है, इन्हीं की याद में ये गीत पेश है।

0: कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाए। और गीत भी आप सुने सी चांतमा की आवाज में, जो पेश की गई ये पत्नी श्रीमती अल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसिर की तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, लिंसी, शकीता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, चेन्नईरो, रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसिर की याद में इनकर मृत्यु 72 साल की आयु में बीते हुए बीफे को हो गई है। इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है। और यहीं तक आप सुने उजाला रेडियो पर आज शोक प्रोग्राम यादें हैं।
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht stond een vrachtwagen met pech tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. Inmiddels is de berger aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Zwolle richting Arnhem. Daar zorgt ook een vrachtauto met pech voor een afgesloten rechterrijstrook tussen Vaassen en Apeldoorn. 8 kilometer en ook hier 15 tot 20 minuten vertraging. De A67 nog richting de Duitse grens. Tussen afrit Panningen en Velden is een ongeluk gebeurd. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं इस गाने के साथ। फिल्म का नाम है कामचोर। हम ये गनवा उजाला पे सुन ली तो सवेरे सवेरे फ्रुकू फ्रुकू कोनो गनवा ड्राई करता है अब उजाला एम फम को लेखास हम बोली गनवा कितना मोई गाना है गा है? जो पति या नहीं नहीं नहीं जो पत्नी है या पति है दोनों अलबै बीवी है या खाविंद है या फ्रेंड या फ्रेंडिन अगर आपस में एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं आशा फर्मकार हाउत दान ये सब बातें इजहार आप कर सकते हैं दान सेख ये दिस सो डिंगर्स मक्लकर तो कि तू हमार स्वामी बाटे वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह मोई
1: उजाला कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है।

और अब तो ये जीना तेरे बिना एक सजा है यार, सजा है तेरे बिना, ये जीना सजा है तेरे बिना। जुनिता गांधी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर।

ऐ जाना जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, नेवर। अब इतना सुंदर गीत के बाद मैं तो कहूंगा कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है और क्या सुनना है।

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड ज़ादा दख 29 एंड ज़ोंडख 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राज़ा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंडोर हाँ तू मौसी सुन है भीतर जिया इवेंट सेंटर दनाख में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं आफीशा की आवाज़ में ओक अवेजक और ब्राज़ा फेस्ट

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो.

0: और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं इस गाना के साथ। फिल्म का नाम है कामचोर। हम ये गनवा उजाला पे सुन ली तो सवेरे सवेरे फ्रुकू फ्रुकू कोनो गनवा ड्राय करता है अब उजाला एम फॉर्म को लेखास हम बोली गनवा कितना मोई गाना है गा है जो पति या नहीं नहीं नहीं जो पत्नी है या पति है दोनों अलबै बीवी है या खाविंद है या फ्रेंड या फ्रेंडिन अगर आपस में एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं आशा फर्मकार हाउत दान ये सब बातें इजहार आप कर सकते हैं दान सेख ये दिस सो डिंगर्स मक्लकर तो कि तू हमार स्वामी बाटे वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह मोई
1: Coffee Time Midday Show शुरू हो गया है।

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

6:13 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज 19 तारीख है अगस्त का, ये महीना जो चल रहे हैं, और वो भी साल 2026 तो तहे दिल से स्वागत है आप सभी को, आप सभी प्रिय सुनवालों को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप होंगे, दिल से आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज जबकि बुधवार है मेरे प्यारे सुनवालों, तो फिर एक बार मौका मिला है आपका सेवा करने का, लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर, फिर एक बार हम और आप मिलकर कुछ पुरानी यादें जो हैं मिलकर ताजा करेंगे, और आज प्रोग्राम फिर एक बार हम सजाएंगे पांचवीं बार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक जी, इनके बहुत सारे फिल्मों के लिए इन्होंने अपना म्यूजिक दी है, गाने कंपोज किए हैं, तो आज फिर एक बार प्लेलिस्ट को सजा रखा है खूबसूरत नगमाओं के साथ जो आप तक हम पेश करेंगे। और ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनौलों, हर एक घंटे पर देश विदेश का समाचार, इश्तिहारे, सड़क का हालात क्या है, मौसम का हालात क्या है, ये आपको सुनाई देगा हर एक घंटे पर। और आज भी अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि 7 बजे के इश्तिहारों के बाद मृत्यु समाचार भी है प्रोग्राम में, और उसके बाद शोक प्रोग्राम यादें भी सेवा में पेश किया जाएगा हियर ऑन यू आर ना द कमर्शियल ब्रेक फन सेव ऑन यूर। मेरे प्यारे सुनने वालों, बरिख्त फन उवलेर हियर ऑफ यू आर, और उसके बाद प्रोग्राम यादें शोक प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। तो मेरे प्यारे सुनो, मेरे ये प्रोग्राम के दौरान आप लाइव एंड डायरेक्ट यहाँ स्टूडियो रतनराम में, जहाँ से ये प्रोग्राम बनती है, आप ऐप कर सकते हैं 02-3-3-0-0-0, तो व्हाट्सएप पर भी कुछ बातें हम कर सकते हैं। और रहे दफ्तर की कार्रवाई, मेरे प्यारे सुनो, आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, आपकी जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे, शाम में 3 बजे तार के जरिए दफ्तर को कांटेक्ट कर सकते हैं 020-409-0807 या तो 24 घंटे आप मेल करें, आपकी हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, आपके कामकाज के लिए, फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें के लिए info@ujala.nl। आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार का गाया हुआ एक नगमा जो अनजान साहब जी ने लिखा, और ऑफ कोर्स इसका प्रोग्राम हम सजाने जा रहे हैं आज पांचवीं बार अनु मलिक जी की म्यूजिक। फिल्म का नाम है बेगाना, मेरे प्यारे सुनने वालों, बेगाना 1986 का एक फिल्म है, किशोर कुमार को पेश करता हूं। एक शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, खा रहे होंगे तो स्वादिष्ट भोजन हो, बेवरक तो दिल लगाकर काम करना, और अगर आप सड़क पर हिस्सा ले रहे हैं तो संभाल के

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, एक दर्द भरा नगमा के साथ आज हमने ये प्रोग्राम को आराम की है। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, मतलब ये है लोग यहाँ पर अपनों में भी है बेगाना और मतलब का भी प्यार। अंजान साहब जी ने लिखा मेरे प्यारे सुनने वालों, और अनु मलिक जिसका प्रोग्राम आज पांचवीं बार हम सजा रहे हैं, इनकी म्यूजिक पर किशोर कुमार ने गीत को गाए हैं। 1986 फिल्म का नाम बेगाना, ये फिल्म से गीत हमने निकाले जिसका डायरेक्टर अमरीश सिंघल और कुमार गौरव, राजकिरण रति अग्निहोत्री, द ग्रेट हीमैन धर्मेंद्र, दीप्ति नेवल, अमरीश पुरी और शैलेश कुमार का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनो, ये उजाला रेडियो है, मैं हूं आपका यारो कया रतन राम दुलारे पांडे। फिर एक बार स्वागत है तहदिल से और शुभ रात्रि आप सभी को हम कहते हैं। आप सभी को फिर एक बार रतन का प्यार भरा नमस्कार और अदापर्स हैं। सरे 6:06 बाकी है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोटरडम से बैक टू द फ्यूचर। अनु मलिक जी का प्रोग्राम आज सजा रहे हैं एंड फोर्थ वीक द लास्ट, और नए महीना सितंबर में एक नया कलाकार या तो अगले मूवी की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सिनेवालो। तो एक छलान हम लगाएंगे 1986 से जाकर मिलेनियम साल 2000। यार 2000 में रिलीज हुआ मूवी जिसका नाम है जोश का एक गीत जो काफी पॉपुलर है आजकल, जहां देखो ये गीत भी चल रहे हैं। इतने दिनों के बाद सेशन त्रिंदर ही आ रहा है और गीत कुछ ऐसा है, काफी रोमांटिक है। और अभी अंजान साहब जी का नगमा आप सभी ने सुने, उनका लिखा हुआ। अब उनकी बेटे जो एक सरताज बादशाह है लिखने में, शायर में, कवि में, सॉन्ग राइटर समीर कुमार या समीर अंजान होना चाहिए, समीर अंजान का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूँ। एक नगमा जो उदित नारायण और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे अनु मलिक के साज और संगीत पर। हियर ऑन यू आर

हरे हरे हरे हम तो दिल से हरे। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण और अलका याग्निक जी ने मिलकर गीत को गाए हैं। समीर का लिखा हुआ, वो भी अन्नू मलिक की साझा और संगीत पर। 2000 का फिल्म जोश से हमने नगमा को निकाले। जोश एक फिल्म है जिसका डायरेक्टर मंजूर खान और शाहरुख खान ने काम किया है और जिन पर ये गीत पिक्चराइज किया गया है, चंद्रचूड़ सिंह और ऐश्वर्या राय, ये दोनों भी मूवी में काम किया है। शरद कपूर मैं देखता हूँ भी है, शरद सक्सेना और क्या नाम है उसका, बोमन ईरानी, नदीरा जी, पुनीत वशीष और या प्रिया गिल। मेरे प्यारे सुनो, जैसे मैंने कहा कि हर एक घंटे पर आप देश विदेश का समाचार सुनेंगे, सड़क का हालात, मौसम का हाल क्या है और इश्तिहारे भी। और आज 7 बजे के इश्तिहारों के बाद आपको ये मालूम रहे कि मौत की खबरें, मृत्यु समाचार भी पुकारा जाएगा हियर ऑन यू आर, और उसके बाद में यादें भी पेश किया जाएगा। शोक प्रोग्राम यादें मृत्यु समाचार के बाद। मदद इज नॉट अ क्लॉक फन सेव। फिलहाल तो एक खूबसूरत गीत की ओर आपको फिर एक बार ले जाएंगे, लेकिन हमें वापस जाना पड़ेगा आज साल या वहां वेर तुरु 1992। फिल्म का नाम लाद साहब और अब की बार गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ गीत। गुलशन बावरा जी इतने सारे खूबसूरत गाने इन्होंने लिखा है और उनमें से यकीनन ये भी एक है। एक नगमा वंस अगेन अलका याग्निक, लेकिन अब की बार विद अ टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू, अन्नू मलिक के साझ और संगीत पर। कि दे दो मुझे दिल। Enjoy मेरे प्यारे सुनने वालों, this is you are back to the future live from our studio Rotterdam।

दो दे दो मुझे दिल और ले लो मेरा ये दिल। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, मेरे प्यारे सुनने वालों, गुलशन बावरा जी का लिखा हुआ ये गीत, रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं अनु मल्लिक के साथ और संगीत पर 1992 का फिल्म लाज साहब से हमने नगमा को निकाले। सुनील अग्निहोत्री जिसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और जैकी श्रॉफ, नीलम कोठारी, मुशीन खान, आसरानी साहब जी, भरत कपूर और साईद जाफरी का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनोला, आपको मालूम रहे कि आज मैं हूं, कल भी प्रोग्राम सजाने चले आएंगे मोरखा नाफन बैने करो। कल दोनों रख 20 तारीख अगस्त को रात्रि में 8 बजे से 11 बजे पेश करने चले आएंगे प्रोग्राम दिल की आवाज। आज को मैंने प्लेलिस्ट को देखा और मेरे प्यारे सुनो वालों, वक्त बहुत कम होता है, हमेशा 3 घंटे में क्या क्या आपको हम सुना पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश लगातार हम करते हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप तक पेश करने का हमेशा। और कल भी जो प्लेलिस्ट होंगे लाजवाब बेमिसाल प्लेलिस्ट है दिल की आवाज का, तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भरपूर आप सभी मेरा साथ देंगे। नतुलक साथ रख बने करो। शनिवार 22 तारीख 20 अगस्त को लोकल प्रोग्राम 5 घंटे लगातार 7 बजे रात्रि से टिल मिडनाइट आप का सेवा हम करेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सुनने वालों, एक फिल्म जो 2006 का है, तो एक छलान फिर एक बार हम लगाएंगे 1992 से 14 साल, 2006 फिल्म का नाम जाने मन। अब की बार गुलजार साहब जी का लिखा हुआ एक दर्द भरा गीत पेश करने जा रहा हूं, जो अनु मल्लिक की साज और संगीत पर मिलकर गाएंगे नगमा सुसैन डिमेलो और सोनू निगम। ये नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, सौ दर्द है, सौ दर्द

Sun unii gamor, susen di melo, mere piare sen olo gulzar, sahab di ka, likahua dar dwara nagma, dunu ni mil kar gaye. Annu Malik ke saaj aur sangeet par film ka naam, Jaane Man. Aur ye film mere piare sen olo, 2006 ka hai, 2006. Shiresh ji, Shiresh Kundar, haji, Shiresh Kundar ji, inka direct kya hua movie, producer Sajjit Nadiawala. Akshay Kumar, Salman Khan, Preeti Zinta, Anupam Kher, Javed Shaikh aur kya naam hai uska? Nidhar Khaik, Niyup Kom. Nahin, lekin in sabhi ne, jiska naam humne kahe hai, in sabhi ne ye movie mein kaam kiya hai. मेरे प्यारे सिनोला आज पांचवी बार हम सजा रहे हैं बना रहे हैं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर और वो भी अनु मलिक जी का पांचवी प्रोग्राम हम सजा रहे हैं Volgende week 26 अगस्त जो इस महीने का आखिरी बुधवार है तो अनु मलिक जी का भी आखिरी प्रोग्राम दिस इज द एंड द लास्ट हम पेश करेंगे और नए महीना सितंबर में Dan gaan we gewoon weer verder met een nieuwe artiest. Or kon honge, filhaal tom kabhi batate nahi. Dat is een verrassing. Lekin unka program hamne kabhi pehle nahi banaye is roop mein. Ye main keh sakta hoon. ओके मेरे प्यारे सुनो मैं देखता हूँ घड़ी की तरफ तो वक्त कुछ ऐसे है और गाने जो हम पेश करने जाएंगे अब की ये गीत जो है कुछ काफी लंबा चौड़ा भी है तो मतलब ये एक तो इस घंटे का आखिरी गीत पेश करता हूँ उसके बाद इश्तिहारे की ओर 7 बजे की इश्तिहारे की ओर हम बढ़ चलेंगे देश विदेश का समाचार मौसम का हालात जैसे मैंने कहा सभी आपको कहा जाएगा सड़क का क्या हाल भी है और उसके बाद मैं मेरे प्यारे सुनने वालों अफसोस के साथ उजाला रेडियो के जरिए भी मृत्यु समाचार मौत की खबरें बरेख्तफन ओवरलाइड पुकारा जाएगा हियर ऑन यूआर और सूचनाओं के बाद मृत्यु समाचार के बाद भी शोक प्रोग्राम यादें भी पेश किया जाएगा दत्तल सेख दत्त तालमाल हिल फील इस बेलकार तो सेवा में फिर हम हाजिर रहेंगे रोन क्वार्ट फोर Iets over 4:15. Ach, ben ik er weer. Met Back to the Future. आखिरी गीत जो पेश करने जा रहा हूँ मेरे प्यारे सनोलो इस घंटे का फिल्म नजायज से हम निकालेंगे और या तरीखन बैठ तो ये गीत एक बारिश वाला गीत है इंदवर का लिखा हुआ अनु मलिक की साज और संगीत पर मिलकर गीत गाएंगे कुमार सानू और रूप कुमार राठौर फिल्म का डायरेक्टर महेश भट्ट अजय देवगन और जूही चावला नजीरुद्दीन शाह दीपक तिजोरी का एक फिल्म तो मेरे प्यारे सुनो ना आल बरिख्त सो रोंद क्वार्ट फोर आप सभी से फिर हम जरूर मिलेंगे

0: समाचार कल हो।
1: और मृत्यु समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए हौतन्स के रहने वाले समस्त परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांदा लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा। हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर की मृत्यु निवखैन के सेंट आंतोनियो चिकन हाउस में हो गई है। हौतन से समस्त परिवार महादेव मिसिर बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 72 साल की आयु में त्वेन जीवन तखियार औत पत्नी एल्फी का पति लड़कन किशन विकास अमरेश और करिश्मा के पिता मीरांदा ब्लिंसे शकीता और राम के ससुर जायदा जनायरो रोशन और नीलन के आजा। हौतन का रहने वाला श्रीमान चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु निवखैन के सेंट आंतोनियो चिकन हाउस में हो गई है। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 4 बजे फ्रेदा खानस्तांद फिर उर किए जाएंगे दांगलोबेक क्रीमाटोरियम और यह फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्तराखंड ओवर फेख्त में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर फुरसोरखिंग परिवार महादेव मिसिर के दुख में शामिल है।

0: शेष हूँ।
1: और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अलमेर के रहने वाले परिवार प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि कल मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंत यार औत लड़कन इंग्रित जिन बेटा और केत प्यारे के माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट एफियन हेनरियट रोलांड हॉल्स्ट हाउस की रहने वाली विधवा जगदेई प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अलमेर से लड़कन प्यारे बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। कल मंगलवार को 91 साल की आयु में इन निहंत यार औत लड़कन इंग्रित जिन बेटा और केत प्यारे के माँ सभी लड़कन के आजी नानी पर आजी और पर नानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस कॉर्टफोर्ट एफियन हेनरियट रोलांड हॉल्स्ट हाउस की रहने वाली विधवा जगदेई प्यारे रामदीन की मृत्यु हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 2:30 बजे फ्रेदा खानस्तांद हलफदरी किए जाएंगे वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-1376-31-08 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार प्यारे और परिवार रामदीन के दुख में शामिल है।

और मरीचू समाचार प्रोग्राम में आप सुनिए अम्स्टरडम से लड़कन बंसी और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 85 साल के आयु में फैफन तख्त खियार औत स्वर्गीय श्रीमान हरिदेव बंसी के विधवा लड़कन सीता शिवराज स्वर्गीय उर्मिला देवी मोहाबू इंदिरा कुशल मीना चक्कौरी स्वर्गीय अशोक बंसी और श्रीमान सुनील बंसी के मां दो पतो दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के पर नानी और पर आजी अम्स्टरडम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु अम्स्टरडम जोइटोस में हो गई है। पहले पारामारिबो मुंदरवेह के निवासी थी। अम्स्टरडम से लड़कन बंसी और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 85 साल की आयु में फैफन तख्त खियार औत स्वर्गीय श्रीमान हरिदेव बंसी की विधवा लड़कन सीता शिवराज स्वर्गीय उर्मिला देवी महाबू इंदिरा कुशल मीना शकौरी स्वर्गीय अशोक बंसी और बेटा श्रीमान सुनील बंसी के मां दो पतो दो दामाद और दो स्वर्गीय दामाद के सास 14 लड़कन और एक स्वर्गीय लड़का के नानी और आजी और 15 लड़कन के परनानी और पर आजी अम्स्टरडम जोइटोस की रहने वाली विधवा जयवंती बंसी रामफल की मृत्यु अम्स्टरडम जोइटोस में हो गई है। पारामारिबो में पहले मिंदरवेह के निवासी थी। अर्थी से विदाई को आप ले सकेंगे कल बीफे के रात में 7 बजे से 8 बजे तक अर्थवार्ड सेंट्रम वेस्खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 12 बजे फ्रेडा खांस्टांद 12 किए जाएंगे वेस्खार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर ऐतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार बंसी और परिवार रामफल के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टर्डम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल के आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्र के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला के मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पारामारिबो में कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अम्स्टर्डम से परिवार लड़कन भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 87 साल की आयु में ज़ेफ़रन तख्तख यार और पत्नी श्रीमती बेत्सी भोला का पति लड़कन एरविन सुदेश मीला और सुचित्रा के पिता रोशिला नॉर्मा स्टेफन और केनेथ के ससुर, सात लड़कन के नाना और आजा और चार लड़कन के परनाना और पर आजा अम्स्टर्डम ज़ुइटोस वोन ग्रुप आनंद ज्योति का रहने वाला श्रीमान आंद्रे भोला की मृत्यु अम्स्टर्डम में हो गई है। पहले पारामारिबो कॉर्नेलिया स्ट्रैट का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले शुक्रवार के रात में 7:15 से 7:15 तक। फ्रेडाफन फन क्वर्ट ओवर ज़ेफ़रन टॉट क्वर्ट ओवर 8 वेस्खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 1 से जातर दखास्तांद 1 किए जाएंगे वेस्खार्ड क्रिमेटोरियम ओक मेरवेक 275 अम्स्टर्डम ओस्टडॉर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार भोला के दुख में शामिल है।

उजाला रेडियो है ये, और यहीं से शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। सीएच आत्मा की आवाज में गीत आप सुनेंगे, और ये गीत पेश है हौतिन के रहने वाले परिवार महादेव मिसीर। पत्नी अल्फी की तरफ से प्यारा स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मीरांदा, लिंसे, शकिता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, जनायरो रोशन और नीलन की तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में 72 साल की आयु में इनकर मृत्यु जो बीते हुए बीफे को हो गई है, इन्हीं की याद में ये गीत पेश है।

कहने को बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाए। और गीत भी आप सुने सी चातुमा की आवाज में, जो पेश की गई ये पत्नी श्रीमती अल्फी की तरफ से स्वर्गीय पति लड़कन किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा महादेव मिसीर की तरफ से स्वर्गीय पिता मिरांडा, लिंसी, शकीता और राम की तरफ से स्वर्गीय ससुर जायदा, चेन्नईरो रोशन और नीलन के तरफ से स्वर्गीय आजा, स्वर्गीय श्री चंद्रदत्त महादेव मिसीर की याद में इनकर मृत्यु 72 साल की आयु में बीते हुए बीफे को हो गई है। इन्हीं की याद में गीत पेश की गई है।

और शोक प्रोग्राम यादें जारी करते हुए सुनने वालों एक और गीत आप लोग अब सुनेंगे और ये गीत पेश है सभी लड़कन की तरफ से अपनी प्यारी स्वर्गीय नानी आजी पर नानी और पर आजी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में इनकर मृत्यु हुए है बीते हुए इतवार के सुबह 85 साल की आयु में फैफन तख्तख यार औत तो इन्हीं की याद में प्रोग्राम में गीत आप सुनेंगे

आप जो सुने तो ये पेश की गई है सभी लड़कन के तरफ से अपने बहुत ही प्यारी स्वर्गीय नानी आजी परनानी और पराजी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में 85 साल की आयु में बीते इतवार की सुबह इनकर मृत्यु हो गई है। तो इन्हीं की याद में नानी आजी परनानी पराजी की याद में गीत पेश की गई है। और इस शोक प्रोग्राम में एक और गीत है सुनने वालों, और ये गीत पेश है सभी लड़कन सीता इंद्रा मीना और सुनील बंसी के तरफ से अपने प्यारी स्वर्गीय माँ दोपतों के तरफ से स्वर्गीय सासू जी स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में इनकर मृत्यु 85 साल की आयु में बीते इतवार के सुबह अम्स्टरडम जयतोस में हो गई है। तो इन्हीं की याद में ये गीत प्रोग्राम में पेश है।

माँ मुझे अपनी आंचल में छुपा ले कि और मेरा कोई नहीं। गीत पेश की गई ये लड़कन सीता, इंदिरा, मीना और सुनील बंसी की तरफ से अपनी प्यारी स्वर्गीय माँ, दो पतों की तरफ से स्वर्गीय सासू माँ, स्वर्गीय विधवा जयवंती बंसी रामफल की याद में 85 साल की आयु में इनकर मृत्यु बीते इतवार को अम्स्टर्डम ज़ुइटोस्ट में हो गई है। इन्हें की याद में गीत पेश की गई है। सुनने वालों, यहीं तक आप सुने उजाला रेडियो पर शोक प्रोग्राम यादें।

मेरे प्यारे सुनो लो, वेलकम बैक। मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे और अभी तक आप चून किए हुए हैं आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो पर। मुझसे पहले बहुत सारे खबरें आप सभी ने सुने हैं, मौत की खबरें, मृत्यु समाचार और उसके बाद में शोक प्रोग्राम यादें हियर ऑन यू आर। सभी दुखी प्राणियों को हम यही कहेंगे कि बस आप ऊपर वाला का नाम लीजिएगा और उनसे प्रार्थना है कि आप सभी के शहन की शक्ति के लिए वो आप सभी को टारगेट दे। मेरे प्यारे सुनो, वक्त तो बहुत ही कम है इस घंटे का जो बचा है मेरे हिस्से का ये प्रोग्राम में, तो मैं सोचता हूँ चलो एक गीत फिर भी आपको हम सुना दें। तो हमारी इस गीत के बाद बढ़ चलेंगे 8 बजे के ब्रेक की ओर और 8 बजे के ब्रेक के बाद फिर आप सभी से जरूर मिलेंगे। हमारे हिस्से बैक टू द फ्यूचर का आखिरी हिस्से होंगे और अनु मलिक जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। और कुछ हफ्तों के लिए प्रोग्राम हमने सजाए हैं, आज 5वें प्रोग्राम जो है सेवा में पेश कर रहा हूं। और अगले हफ्ते अनु मलिक जी का आखिरी भी प्रोग्राम हम पेश करेंगे। मैं देखता हूं एक गीत हमने तैयार करके रखा है फैज अनवर जी, इनका हाथों से लिखा हुआ नगमा जो हम निकालेंगे फिल्म जिसका नाम है सुरक्षा। सुरक्षा नीतफा मिथुन, ये सुरक्षा 1995 का है, अनु मलिक जी के साज और संगीत पर एक नगमा मिलकर गाएंगे उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य और अलीशा चिनाय। मेरे प्यारे सुनने वालों, ओ मेरे सनम गीत का बोल है। सुरक्षा 1995 का ये जो फिल्म है, डायरेक्टर राजू मनावी और सैफ अली खान, आदित्य पंचोली, दिव्या दत्ता, शिबा, सुनील शेट्टी, कादर खान का एक फिल्म। तो इसके बाद ब्रेक, मेरे प्यारे सनम ब्रेक के बाद आप सभी से फिर हम जरूर मिलेंगे हियर ऑन यू आर।

नींद उड़ रही है, चैन खो रहा है, ऐसे ना मुझे देखो। प्यार हो रहा है। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें मेरी प्यारी सुनो वालों, समीर का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं, और वो भी जिसका प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज पांचवीं बार, अन्नू मलिक जी संगीतकार। मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ कठी कुछ मीठी फिल्म का नाम, और ये फिल्म 2001 का है। राहुल रवेल जी ने डायरेक्ट किया है, और जिन पर ये गीत भी पिक्चराइज किया गया है मूवी में, सुनील शेट्टी और काजोल। इन दोनों के अलावा मैं देखता हूँ फिल्म में ऋषि कपूर भी है, रति अग्निहोत्री, रजाक खान, दिनेश हिंगू और पूजा बात्रा। मेरे प्यारे सुनवालो, ये उजाला रेडियो है, और धीरे धीरे कुछ सेकंड्स के बाद होंगे 17 मिनट जो बीत चुके हैं 8 बजकर। ये है आप ही का मनचाहत और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो, और एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से पेश कर रहा हूं प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज पांचवी बार हम सजा रहे हैं, बना रहे हैं प्रोग्राम अन्नू मलिक जी। इन्होंने बहुत सारे मूवीज में बहुत ही सारे खूबसूरत गानों के लिए अपना म्यूजिक दिए है, कंपोज की है। तो आप सुन रहे हैं किस तरह के नगमाए, और अगले हफ्ते अन्नू जी का आखिरी प्रोग्राम हम सजाएंगे हियर ऑन यू आर। मेरे प्यारे सुनने वालों, व्हाट्सएप पर कुछ लोगों ने भी ऐप किए हैं, जैसे कि अवसलफीन का सुशीला चंद्रिका सिंह जी, और उनकी बेटी मालती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए, और बेहद खुशी है हम कि आप सभी चून किए हुए हैं मालती जी और सुशीला जी, थैंक यू लिवेल। और भी सुन रहे हैं प्रोग्राम इल्स रामदयाल जी, आइडन हेल्डर, धन्यवाद इल्स जी आपके ऐप के लिए, और आप बिनकोर जा रहे हैं फकांसी से हमारे प्रिय मॉरिशियस की ओर, तो मोई फ्रॉइड से। मैं समझता हूं कि अगर आप वहां जाएंगे तो आप भरपूर एंजॉय करेंगे, बहुत खूबसूरत है मॉरिशियस, एंजॉय। इफोनोडोलॉजी दनाख शहर में भी चून किए हुए हैं इफोनो, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूर वहां ख्रोनिंग में भी हमेशा जब भी मौका मिलता है चून करते हैं, और ऐप भी करते हैं हमारे प्रिय बेटी जी, थैंक यू वेल बेटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चून करने के लिए और ऐप करने के लिए। मार्सब्रुक में भी है रेंद्रू और चित्रा जी, प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी एंड यूली खान बिन कोर्टोक लेकर नार मोई फकांसी मार्क। और नाट्यूलक हिल्फुल स्टेरक्ट मेथड फलीस, लेकिन चित्रा जी हरेंद्रू जी आपको बधाइयां शुभकामना भी हम कहेंगे, क्योंकि कल जो आपके माता श्री का जन्मदिन जो है, माकरन मोए रखफान एन फरवेन हारखूत। हार्लेम शहर का आइलिन जी आपने भी ऐप किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आइलिन जी, आल्टेड हेल लीफ आपके मेल जो है या ऐप है, ऐप दिल से धन्यवाद आइलिन जी। मफराव एन मनेर बिहारी, हाँ ही लमालो फलाद बेनिक 320 फॉल्ट वैकेंसी बीत गया, आप भरपूर सेवा में आप सभी का हम रहेंगे तीनों दिन, वुंसदाग डोनरदाग सैटरडाग, एंड दैट गान वी सो डून नोग जेकर 8 वीक लंग, उसके बाद में क्या होंगे
तो फिर देखा जाएगा। थैंक यू वेल, धन्यवाद आपके ऐप के लिए और चून करने के लिए। सत्या जी आराम से नाम, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू वेल हम कहेंगे आपके ऐप के लिए। आप ही हमेशा भी सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दिल से धन्यवाद सत्या जी। और जो भी हमेशा सुनते हैं रतनाम श्रीनाम में, प्रिंसेस राज, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए और चून करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और एक मेल भी आए हैं बहुत दूर, जहां हमारी इस देश में रात्रि होने को आए हैं, कुछ घंटों के बाद हम यहां सोने को जाएंगे, वहां तो अभी सब जागे हुए हैं और वहां तो अभी सवेरे हैं। वैंकूवर कनाडा में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं रतनाम का भैया राजेश सिंह, आपके ऐप के लिए बहुत बहुत डंकीवेल धन्यवाद। फनोइट वैंकूवर, आप इतनी दूर जाकर भी चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और आपके साथ साथ भी सुन रहे हैं प्रोग्राम सुशील जी और जॉयसलीन जी, तो सुशील और जॉयसलीन जी को भी स्वागत हम करते हैं और धन्यवाद कहते हैं चून करने के लिए। एंजॉय वैंकूवर एंड एंजॉय यू आर। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत की ओर आपको ले चलेंगे, रानी मलिक जी का लिखा हुआ, विनोद राठौड़ की आवाज और संगीतकार ऑफ कोर्स, जिसका प्रोग्राम सजा रहा हूं, अनु मलिक जी। फिल्म का नाम बाजीगर, इतनी हतिंद्रीय नीत 1993, छुपाना भी नहीं आता।

नहीं आता और मिटाना भी नहीं आता। विनोद राठौर की आवाज मेरे प्यारे सुनो लो, और रानी मलिक जी का लिखा हुआ गीत विनोद जी ने गाकर सुनाए हैं। अनु मलिक के साज और संगीत पर मेरे प्यारे सुनने वालों, बाजीगर फिल्म का नाम, बाजीगर फिल्म 1993 का है, निहत इंद्रिय निहत। फिल्म का जो डायरेक्टर है ये दो भाइया अब्बास और मुस्तान, और वो भी बर्मा वाला शाहरुख खान, काजोल, शिल्पा शेट्टी, राखी, दलीप तहिल, और कौन है जरा मैं देखूं, जरा मैं झांकूं, जॉनी लेवर, इन सभी का एक फिल्म। एम्स्टर्डम सेंट्रम में भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और हमें, मुझे मालूम है आपने कभी कहा है और शायद कई बार कहे होंगे कि आप 24 घंटे 7 दिन लगातार उजाला रेडियो पर चून किए करते हैं, और हम बात कर रहे हैं प्रभा जी एट एम्स्टर्डम सेंट्रम, डंकी वेल आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप इतनी जबरदस्त फैन है उजाला रेडियो का।

आपको धन्यवाद हम कहते हैं, आप भरपूर एंजॉय करें और मजा ले और मजा भी ले रहे हैं जो हमारे इस शहर रोहतना में आए हैं, मुझसे मिला नहीं और वापस जा रहे हैं अम्स्टरडम की ओर। बड़े भैया नरेश दिहाल, तो नरेश दिहाल दंकेवाल आपके ऐप के लिए, कभी कभी आया करो, कुछ खाया करो, कुछ पिया करो, कुछ बातचीत हम किया करें, तू जाने तो मामला कैसा है कि आप तो निकल पड़े रोहतना से। अम्स्टरडम हैव अ सेफ ड्राइव और एंजॉय, गाने खूबसूरत हो आप मजा लें, लेकिन आपका फोकस रास्ते पे होना चाहिए, तू जाने है तो। मेरे प्यारे सुनने वालों, एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चल रहे हैं और गीत कुछ ऐसा है अनवर सागर जी ने लिखा, इतनी रोमांटिक सॉन्ग और अनु मलिक के साज और संगीत पर द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल जी मिलकर गीत गाएंगे कि दो दिन तो क्या ना गुजरेंगे, दो पल तेरे बगैर हो जाऊंगा प्यार में पागल, मैं तो तेरे बगैर। फिल्म का नाम आ गले लग जा और ये फिल्म 1994 का है।

beautiful romantic song mere pyare sunne walo hame aap se shikayat na hui na hi hogi sun nigam aur alka yagnik ji ki awaze samir ka likha hua aur dono ne khoobsurat romantic song milkar gaaye hain annu malik jiska program hum saja rahe hain annu malik ke saaj aur sangeet par aan film ka naam mere pyare sunne walo aan एक फिल्म है 2004 का ट्विटर्स एंड देन फियर मधुर भंडाकर ऑफ ट्वेल्व मुतिक से खूतोर मधुर भंडारकर हाँ भंडारकर इनका डायरेक्ट क्या हुआ मूवी शटगन सूत्रगन सिन्हा अक्षय कुमार सुनील शेट्टी परेश रावल रवीना टंडन लारा दत्ता प्रीति जहांगी जैकी श्रॉफ मनोज जोशी इरफान खान राहुल देव राजपाल यादव और बहुत सारे लोग ये मूवी में काम किए हैं मेरे प्यारे सुनो मैं देखता हूं घड़ी की तरफ तो वक्त कुछ इस तरह से आंच निकल गया क्या बताऊं गाने हैं इतने ज्यादा और वक्त आज मिला है बहुत कम और कारण यह है कि प्रोग्राम में 7 से 8 बजे बहुत सारे मृत्यु समाचार थे और शोक समाचार मारत मांगनी है जो आज बचे हैं पॉपुलर सॉन्ग्स खूबसूरत नगमाएं ले चलेंगे अगले हफ्ते की ओर और कोशिश करूंगा एक धमाकेदार प्रोग्राम अगले हफ्ते बनाने का जो आखिरी होंगे अन्नू मलिक जी का उम्मीद और आशा करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो हमने सजाए हैं बनाए हैं आप सभी ने भरपूर भी पसंद की है एंजॉय की है नगमाओं के साथ अगले हफ्ते जैसे मैंने कहा अन्नू मलिक जी का आखिरी प्रोग्राम एनतुलक सुविसो हम कल आप सभी से फिर मिलेंगे मोरखनावंत दान बेनेकर में दिल की आवाज़ रात्रि में 8 से 11 बजे विद ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स और उसके साथ साथ कुछ दर्द भरे नगमाएं जो प्लेलिस्ट में हमेशा शामिल रहते हैं शनिवार को भी सेवा करने आएंगे यहाँ स्टूडियो रतनाम से 7 बजे रात्रि से टिल मिडनाइट लेकर लोकल प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर तो मेरे प्यारे सुनो वालों आज्ञा लेने से पहले एक गीत आपको हम सुनाएंगे अभिमन्यु जो एक फिल्म है 1989 का निहति निहन तख्त अलका याग्निक अमित कुमार अनजान का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग दोनों मिलकर गाएंगे अन्नू मलिक की साज और संगीत पर कि चांदनी रात है चारपाई छोटी पाठ रही है ये फिल्म महेश भज्जी का डायरेक्ट किया हुआ है और अनीता राज पूनम ढिलो किमी काटकर प्रेम चोपड़ा शक्ति कपूर और अनिल कपूर का एक फिल्म मेरे प्यारे सुनोलो रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर से जरूर फिर मिलेंगे सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज़ टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल

उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है। उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: और आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं इस गाने के साथ, फिल्म का नाम है कामचोर। हम गनवा उजाला पे सुन ली तो सवेरे सवेरे फ्रुकू फ्रुकू को गनवा द्राय करता है अब उजाला एम फम को लेकर खास। हम बोली गनवा कितना मोई गाना है यार, है जो पति या नहीं नहीं, नहीं जो पत्नी है या पति है दोनों अलबाई बीवी है या खाविंद है या फ्रेंड या फ्रेंडियन, अगर आपस में एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं। आशा फर्माकार हाउत दान ये सब बातें इजहार आप कर सकते हैं, है? दान सेख ये दिस सुडिंगर्स मक्लक तो कि तू हमार स्वामी बाटे वगैरह वगैरह वगैरह वगैरह मोय
1: उजाला कॉफी चाय मेरा शो शुरू हो गया है।

0: होठों पे सच्चाई रहती है,
1: जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
2: होठों पे सच्चाई रहती है।
3: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

उजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो